0: सारे कड़ा मंछे ठूला बड़ा आठ छा भाने संग
1: पानी बन जाओ या पानी तिर है।

जोजो लपा नेपाल भाषा या ज्याजो नेपाले निनेतो सुनादिपी सकलसित दुनगलन से लसकुसा जिरश्मिला प्रजापति थनिनिसिन हुगु ला सुदुजला अलिनिनामी भाजु मेजपि ज्याजो नेपाले नापदुक छिंगेना सुनादिल ज्याजो नेपाले स नेवा सुसं बुखत तेगु अलिनिवा मेते हकेगुजी पछिपिसं सुगु खजल यकुयको बुखत दु सुबुख दुलेर गाधाबले नगरपालिका यु बुख दु अलि अथे हे विजयरत्न असम बडेबेको या त हंगु बुख दु अलि अथे रञ्जना लिपि सिनेगु बुखदो यको बुखदो ला जे छौ ढुंका मेगु बुखदते खला आथ बुख नका वई न गे जुयाछुनी रासा गुबेले तत रंगो ज्याखय बुख जाय छिस मखना छुनी मला तर चिसि रंगो ज्याखय चाहि बुख होइ छुनी व एक्सेस यु ख वा पत्र पत्रिका सिकपि स ज्याजो या ढुंका चाहि प्रेस विज्ञप्ति छय ह मह मला उखेन यको ख पाई एजा छुन ज्याजो छि याना दियासा थोंगनेल अफ छि जस्तै अनलाइन मीडिया स्ट्रीम आला मखला अनलाइन मीडिया सोया सपोज फर एग्जांपल छि नेवा अनलाइन न्यूज देया दुने नेवा अनलाइन पत्रिका अनछि सोया दिल लासा दप्ले को पाके स्वापु धागु था दे मला स्वापु धाउ थासे होना छि क्लिक यान दिल लासा अन कांटेक्ट याउ अन ईमेल अरे नम्बर त दैनि अन चाहिँ छि वो ईमेल आईडी ले छि जे थगु बुख छोइ दिल अले वेक अप इन्डस को फोन न यान दिल लासा अले छु चाहिँ न्यूज बाला को कभर छि खला वो चाहिँ अन फोन नम्बर न बेत गु दु अले अन ईमेल आईडी न दु एज अठेना चाहिँ कबडी छ कुत यान दिस लिस्किबिरेको न्युज सभा फोटो नछेमा न्युज त चाहिँ बालाको कभर चाहिँ छुके छुयादिउ ख अन्त यहाँमा कि मक्सा छिके गुलिन इमेल आइडी त अन चाहिँ छुयादिमा ल छ यो को ज्याख त जुया छु नि तर ओ ज्याख यो पट्टि बुख चाहिँ कम हेज क कभर चाहिँ ज्या जस दक्ले नापाङ्गो मेते मे ढुङ्गा चाहिँ थोङ्याको बुख त छसी कथ त्यही कुजी

dipatu gak nolos kusta jazo Nepali sa Nepali jazo chinya na suna dila jazo sa ye mahanagar palika ya chagu bukhate dina ye mahanagar ha twa twale sankipa mohotsav yaigo jugudu ये महानगरपालिका थोयबेगो असार 5 गते निसी 26 गते तक शुक्रबार व शनिबार सार्वजनिक था पार्क दवली व चुकचुके त्वा त्वाले सकिपा महोत्सव यागु जुगुदो महानगर छगो पत्रकार सम्मेलन यासे महोत्सव छि सार्वजनिक यागुदो महानगरिया कथ महोत्सव या उलेजा असार 5 गते खुला मञ्चे व 6 गते व्हीकल फ्री असन क्षेत्र सञ्चालन यागु जुगुदो नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास व विस्तार या त योगदान बिगु व नात्मक उद्योग या तो समुदाय नाप स्वयं उद्देश्य ठुकु जाजो या तेना गुदा का महानगर दहागु दो महोत्सव अंतर्गत लघु चलचित्र नापों चलचित्र प्रदर्शन कला व रचनात्मक उद्योग संबंधी संवाद सांस्कृतिक नापों सृजनात्मक जाजोले स्थानीय नस्ता बोझा या तेंगु खा चलचित्र प्रदर्शनी नीति एलडी स्क्रीन साउंड सिस्टम नापों क्यूरेटर या व्यवस्था महानगरीय संपदा लिसे पर्यटन विभाग व स्थानीय युवा तेसा व्यवस्थापन यायगु जुगुदु महानगर वैगुदि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वाना थुगु ज्याझो या तेंगु ख महानगरीय प्रवक्ता नवीन मानन्धर पृथ्वीगु विज्ञप्ति त्वा त्वाले फिल्म महोत्सव महानगरियागु रचनात्मक शहर यात्रे प्रारम्भिक पलाजीगु दासे थुकी या त तालाकित संचार माध्यम चलचित्र कमी नाप सरकार वाला तेगु गुहालीजीगु भलसा बेकल नेथना दिगु दु महानगरपालिका आठो विशेषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म दिन या लस्ता चाहिँ सोना या तेगु ज्या खन्जुल आ अन चाहिँ आदि सुबले नेपाली व नेवा भाय गुप्रे संकिपा खन्युल सायद प्रदर्शन जिगु छ स्पेसिफाई यन तगु मदु या छ आठो चाहिँ नगु एक्सपीरियन्स जिगु जुल नपन संकिपा त एना क्यों अन विशेषणा चाहिँ इन्द्रजात्रे इले जनबाले हे चोपियन जनबाले मछिन्द्र बहाल क्लब दया दुमखला आवे कपी प्लस अले हे मेहालामी पवित्र कसा जुपी वेकन व क्लब हेतु वेकपी सँगै अनि मिलेज या मेगु न युसु क्लब क्लब मिलेज या चाहिँ अन विभिन्न संकिपा त किनि पन आदिबो प्रश्न जिफो कुमेगे बेसा चाहिँ असार महिना बजेट सिरेके त यागु खला रखान आसे जिफो तर अनल हस अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वागत का खजुल तर आयु इले आठो वाई वयु इले चाहिँ आ सायद छुएन छुएको कभर त या कि मसाना एलडी स्क्रिन ल प्रब्लम जि एन आ किनेको व्यवस्था चाहिँ यागु दुजि स्वे गेजी खा आथौ नक्तिनी 2 गते जुल असारिया 5 गते राबले थु शुक्रबार 6 गते रे शनिबार शनिबार सिटी नखन सिटी नखाय बारे न छौ खला मास्ती होला थुक्सी सिटी नखा चाहिँ बसल प्लान लिपाला तमलाई बिसे अन लगा दोजिया चाहिँ असारे ला होला तर सिटी नखा लगा दाइ चाहिँ झिनेवा तेगु थगु हे व वातावरण दिवस मतलब सिटी नखा भले चाहिँ लया गुलिन अन प्राकृतिक मुहान त दु सफाई गुदि अदगा दाइ गु तुन्थि अले लोहिति बुगाजा अयु चाहिँ सफाई गुदि तर आ थो विशेषना शहरी क्षेत्र स्वयं खसा थो थो लोहिटी जेना छ लोहिटी तल्ला लोहिटी र खस नारा तर लोहिटी लोहिटी त न तस्को हे कम ज्याव नुगला लोहिटी स्रोते मरे नुगला आ दक्षा चाहिँ कोइठंग क गामुया व प्लास्टर या नाम खला धलानी ना एना छेन्दिनी बलेला स्रोत दको सुना वन नुगला अले आ तुन्थी हाल न अठे ख तुन्थी न ल अबे उ तस्को मुजि नुगला ए न सिम्बलाइज्ड रूप हे जो सा छु छु तुन्थी तदु व तुन्थी सफायाको ज्याजी गन गन तुन्थी व प्र्याक्टिकल ज्यान यान छमदु लापरिचा एकदमै थो ये यल महानगरपालिका शिवे पचतापाको जस्तै यले न हामी मेगु न न वरा तदुनी पचतापा तपाउने अवस्थित अनजुल अले खोप जुल थिमी जुल मला अनयुप्ति थासे भन्ने बले चाहिँ व तुन्थी सफाई अन्त चाहिँ व लुज एस वे खनि होला अले उले जको मको सिटी नगर आबे तसको सक्क व न्युदि अले थुके सिग्निफिकेन्स यु खत छिस चाहिँ आ व सिटी नगर खुनि यो पूजा यो सांस्कृतिक पक्ष त दुवे जुल मेन चाहिँ व न्यु खला आथौ गरे व बारे महिना न्यु दु एज आ के यु पति चाहिँ पति चाहिँ महत्व कम जुला थे जु मखला बारे महिना छिटिबा दुसा वा छिजा अनु थासु छ न्याबले न न्यु खन दिसा नापा पुलेला व ने त कि सिट नखबेमा कि भेवेमा सायद कि बुदिवेमा जु मखला 10 क नापा सब मथुरा से हामी जु कना दिदा नापा खे ने त खे छगल खे ने त चाहिँ बुदिवेमा
मेबले साथी खेने वे मरु आसु ले खें मरु का खें तस्को मजा आ आठे वो व्यावसायिक रूपां खाले ही मखनी साउ बिला वाले खेने मास्टर वे को ये प्यासुनी हो बुद्धि वाले से बुद्धि जुम्म समेत से बियां छगो अज मेबले इंदला बागा बागा ताना बियां खला अब ले संतान छम्ज को जेम बनी मुसो में प्यामन यामो चिमा तक दे गना होनो छे वाले अज संयुक्त परिवार जेबले तबाया मस्त बोया मस्त काकाया मस्त I'm going to go to the city.